0: 们得的入职培训还剩下最后一步，二哥给他准备了一份新奇礼物。
1: आप कह रहे कुछ नहीं होता है, एंड तक पहुंच गई थी यार।
0: 火焰理发诞生于街头，是极具观赏性的巴基斯坦洗剪吹。哈曼德第一次体验。